0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

महाराज जी मेरे गुनाह ना बिचारियो। महाराज ने आख्या काल पुरख बड़े दयालु ने, दीन दयाल दया नित, दुख न देखत है पर देत न हर। गलतियां ते सारियां दियां मालक नूं पता है, पर जेड़ा हाथ जोड़ के चरनी पैंदा पी मैं मुड़के गलती नहीं करदा, महाराज उहदा पर्दा ढक लैंदे ने। आ जा, जदों आ गए ते दुख दा अंत हो गया। कहण तो भाव विछड़े सारे आ, जेड़े इस विछोड़े नूं खत्म करके गुरु नाल जुड़ जांदे ने, परमेश्वर नाल जुड़, उहनां दे दुखां दा अंत हो जांदा। पर जेड़े विछड़े भी रहण, सारी जिंदगी परवाह ना करन, उन्हां दे दुख नहीं मुकदे, उन्हां दे पल्ले रहिंदा पछतावा, ते पछतावे दे विच केवल दुख ही दुख है, सुख नहीं निकल सकदा। हुण किन्ने लोक ने जिहड़े परवाह नहीं करदे, कोई लोड़ नहीं वेखी जाऊगी। अजे बड़ा समा पिया, सिख पंथ विच इदां दे गुरमुख है ने भाई प्यारे प्रेमी, जिन्हां ने अजे तक अमृत नितनेम नहीं शुरू कीता, जिन्हां ने अजे तक खंडे बाटे दी पौल नहीं लई, वो समा उड़ीकदे आ। कोई गल नहीं, बड़ी उम्र पई हुई है, बड़ी उम्र पई हुई है। जदों श्री गुरु नानक देव जी ने यह बचन उचारिया ना, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मोए इजराइल गिरफ्ते दिल हेच ना जानी, मौत सिर ते आ, पता कोई नहीं केड़े वेले मौत वरत जावे, जिदन मंजी ते पै गए जान चढ़ाई कर गए फिर ते पछतावा ही आ, फिर करन नूं समा कुछ नहीं होना। मौलवी ने कहा सी, मौलवी कुतुबद्दीन ने, नानक जी मौत दी गल करन दी अजे लोड़ नहीं, नाम दी गल करन दी भी अजे लोड़ नहीं, अजे ते बहुत समा पिया होया। मारे आख्या मौलवी जी किन्ना कु समा पिया होया बंदे दे कोल? उह आंदा जी घट्टो घट 100 साल ते है ना। मारे कहिंदे मन्निया ते नहीं जांदा भी 100 साल है। मैं संखेप कर मनिया तो नहीं जाता, पर मन लो भी एक बंदे को 100 साल है, जे ओदे कोल गुरु की मत नहीं तो 100 साल दुनिया से किदां बतीत करके चुल जाता खाली हाथ। मैं तुहानू दसना सुनो। आख्या जी दसो। मारे क्या कागज कलम फड़ाया, लिखो 100। उन्हें 100 लिखिया। उमरां किदां लंघदियां जा रही ने, किदां फिर पछतावे पले रह जाते। मारे क्या यह गल दसो, चार पैर दिन ते चार पैर रात? अंदर जी ठीक। दिने लोकी किरत विहार करदे आ ते रात नूं सौ के बतीत कर दिंदे आ। अंदर जी बिल्कुल। ते मारे कहिंदे ने जिस बंदे कोल 100 साल उमर आ, उहदे विचों 50 साल जागिया ते 50 साल ते उहने सौ के बतीत करते? अंदर जी बिल्कुल। ते मारे कहिंदे ने जिहड़ा बंदा सुता होया, सुता ते मरिया बराबर वा, सुता बंदा सेवा नहीं करदा, नाम नहीं जप सकदा, वो ते गुरमुख आ, जिन्हों आख्या भी क्या समणा क्या जागना, गुरमुख ते परवान। जिन्हां राती सोधर पढ़ के सोहला साहब पढ़ के घड़ी नाम जप के सुते ने, उन्हां दा रात नूं भी नाम चलदा, उठदिया तक उन्हां दे अंदर नाम दियां गूंजां पैंदियां रहिंदियां। पर यह दात सारिया कोल नहीं हुंदी, लोकी सौ के बतीत करदे आ। मारे कहिंदे ने अद्धी उम्र बंदा जागया ते अद्धी उम्र बंदा सौ गया, ते मगर 50 साल ते सुत्या नांगे? आंदा जी नांगे। मारे कहिंदे ये ते नखेद उम्र आ, कढ़ो बार। कटाती किन्नी बची मगर? आंदा जी 50 साल। मारे कहिंदे सुन इस 50 साल उम्र दा हाल, 15 बरख तीक अनजाना, बालपने में कीन बिहाना, जदों किहे दे घर धी पुत होवे ते 15 साल तक दा किहे दा धी पुत अमृत वेले उठ के नाम ना जपे, 15 साल की उम्र तक कोई चौंकड़ा ना मारे, तो लोकी माफी दे दिंदे आ भी कोई गल नहीं, अजे बच्चा वा वड्डा होके कर लेगा, हुणे इहनू की कहीए। पर मारे कहिंदे ने जिहड़ी 15 साल बचपन की उम्र आ मौलवी जी, घटनी तो उसे उम्र विचों ही आ ना, जिहड़ी 100 साल दरगाह विचों लिखा के लिया, कोई बचपन की वखरी थोड़ी मिलनी है। कहिंदा जी उसे विचों। मारे कहिंदे ते बच्चे खा पी के सौ के उम्र बतीत कर देंदे ने, इहदे विच नाम नहीं जपया जांदा, इहनू घटा दिओ। घटा दिती, मगर किन्नी बची? मौलवी जी कहिंदे आ जी मगर बची 35 साल। मारे कहिंदे ने 35 दे विचों 15 साल जवानी दी उम्र। जवानी दी उम्र ओ हुंदी आ जदों जवानी आउंदी आ, फिर जवानी दे फुरने, जवानी दियां तरंगां, जवानी दियां वाशनावां ओ पूरियां करदा रहिंदा बंदा, ना सौण दे टाइम दा पता ते ना अमृत वेले उठण दे टाइम दा पता। महाराज दी इक विचार आ, जिन्हों रात नूं समय नाल सौण दा पता लग गया वह अमृत वेले भी उठ जाएगा, क्योंकि नींद का भी तो एक समा ना, जिहड़ा 12-1 बजे तक सुता नहीं वह अमृत वेले नहीं उठ सकता।

रंग माण लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला दिन थोरड़े थके भया पराना चोला। मारे कहिंदे ने आनंद लै अज इन्हां न्याणियां दे पिछे करके संगत विच नहीं ना हुंदा भी कम पिछे पै जाणा न्याणियां दे घाट पाऊगी इन्हां दे सुख ना किते घट जाण। इन्हां तैनूं बाहों फड़ के संगत विच नहीं लै के आउणा जे आखे भी इन्हां करके मैं पहलो इन्हां दे कम सवार लां। ना ना इन्हां दे भोगां दी भी उड़ीक ना रखी भी जदों मैं चढ़ाई कर गया ते पता नहीं किड्डा क वधिया मगरों मैनूं मुक्त करा देणगे। इत्थे किसे दे सिर ते गल नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आख्या आपण हथी आपण आपे ही काज सवारिया। आपे बाणी पढ़ अपनी किरत विचों आपे गुरसिखां नूं प्रसाद छका ते आपे ही उठ के अमृत वेले जप सतनाम श्री वाहिगुरु जुड़ जाएगा ते सुखां दुखां दा अंत हो जाएगा। जे विछड़िया रहा ते पछतावा रह जाएगा। किवें पछतावा फिर फरीद साहब जी दस रहे ने आओ आरंभ तो शब्द दी विचार

0: देव जी कहिंदे ने ओ कित्थों मिलेगा, मारे कहिंदे जदों मैं अपने मुख तो ओदे गुणां दा उच्चारण कीता, जदों मैं ओदा नाम जपिया, वाह मालका सोना घर दिता है, धीआं पुत दिते ने, तंदुरुस्ती दिती आ, माया दिती आ, कपड़े दिते ने, इन्ने पदार्थ दिते, एक एक चीज वल वेख के जदों ओदा शुकराना शुरू कीता ते ओ अंदर ही प्रगट हो गया, ओ किते बाहर नहीं सी, ओ बाहर नहीं सी, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दा चानण, सब मैं चानण होए, जिन्हां ने गुण उचारण कीते नाम जपिया उन्हां दे अंदरों प्रगट हो जांदा है जी।
1: महला पंजवा।
0: हां जी।
1: मान को मोहे माओ दिन्ना धणी अपाहे।
0: हे मां, ए जिहड़ा मैं हुण नाम जप रहा ए मैं आप नहीं प्राप्त कीता, ए ते जदों मैं अरदास कीती तरला लिया ते नाम एक हीरा है, एक मोती है, ए रतन है, ए मेरे मालक ने आपे ही जपाया, जेड़ा भी सरन पै जे ओदी बांह फड़ लैंदे आ ना, मारे कहिंदे ने हठ मजाहू मैं माणक लद्दा, मुल ना किद्दा मैं कु सतगुर दिता, ए जेड़ा नाम ही अंदर ही सी, पर अंदर दा नाम भी गुरु दी कृपा तो बिना प्रगट नहीं हुंदा, जदों महाराज दे चरणां विच मत्था रगड़िया सिर रखिया ते महाराज ने अंदरों ही नाम दा हीरा प्रगट कर दिता, वो नाम चल पिया मेरे अंदर।
1: हे आओ महिजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए।
0: हुण मेरे अंदर ठंड पै गई, की ठंड कादी आ, विकारां दी तपश, तृष्णा दी अग, इनू ठंडिया करने वास्ते कई जुगतियां संसार ते वरतियां गईयां, कई लोग बर्फ विच बह गए के अंदर नू ठंडिया करने वास्ते, कईयां ने चंदन घोल के सिर तो लैके सारे शरीर ते मल लिया, मथे ते भी मिलिया, कई चंद्रमे दियां रातां नू कपड़े ला के पै रहे उहदे अगे भी चंद्रमे दियां किरणां ठंडियां ने, तपश मिट जाएगी, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने ना ना, चंदन मलिया भी बंदा ठंडा नहीं हुंदा, कोरे विच बैठिया भी ठंडा नहीं हुंदा, ते चंद्रमे दे अगे बैण नाल भी ठंडा नहीं हुंदा, मारे कहिंदे ने चंदन चंदन सरद रुत, मूल ना मिटई काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम, ठंडे ओ होणगे जेड़े अमृत वेले उठणगे ते अपने मुख तो जपणगे।

दर्शन दर्शन की इच्छा है। हे महाराज ते जे तुसी एक बारी बुला लो तुसी आ जाओ ते मेनू इना सुख मिलदा जिदा कि शाहूकार ने एक पद विच लखां रुपये वट लवे ओ लखां रुपया लैके अपने घर जावे ते उहदी अड्डी थले नहीं ना लगदी खुशी नाल। जे तू एक वारी आवाज मारे मेरे मालका ते इन्नी मेरे अंदर खुशी हुंदी है जिदा मैं लखां रुपये

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007
1: गैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6660 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: acabar seu canal.
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालिया दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ली तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित कीते जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह दी जानकारी लेन लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशनस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570 65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www

वार श्लोकाना श्लोक भीम हले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी श्लोक।

0: नानक सतगुर मेल हर सलो महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लोचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचे राम रसा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दा लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर्ज मैं सो कचन कच महला पहला
1: वड्डी उड़िया जा वड्डा नाम वड्डी उड़िया।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग फिरे जन विस्माद पाण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि किडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग।

0: हाजरा हजूर देख विडान रहया विस्मार नानक भोजन पूरे पाग महला पहला
1: कुदरत दिस है कुदरत सुने है कुदरत

तै ताको ताको अपने भोके होए पसमड़ पावर सिदाया वड़ा हो अधुनिदा गल संगल कात चला अग्य करनी की तो बाती है बहले का कर समझाया था ना होई पौंदे।

बहुतन लाटू मधानिया अन कहा पंखी भांदिया लेना सासु ए चाट पोए जंत नानक पौंदिया गंत नंत बंधन बंद पाए सोए पै कित नचे सब कोई नच नच हसे चले सिरोई उड़ना जाही सिदना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उतरन पाए है नए लै नरक ना जाइए।

शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूपे अपार तीर्थना व्यर्चा पूजा करवास बेकार जोगी सुनते अवन जेते अलख नाम करतार सुख

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करता पौड़ी बिन सतगुरु किन न पाया बिन सतगुरु किन न पाया सतगुरु विच अब रखी।

नानक हर किते हर उते सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा किता दीपां मंडला खंडावर पंडा अंड चेर उत्पुजा खानी सेत जहां सोमे जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता फे करणीता सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुआरी स्वास्थ तिस तिस दे बाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।

0: हर भगत भंडारा, भगत भंडारा।
1: श्लोक महला पहला, कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार, कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसन हार, कुर सोयना कुर रूपा कुर पहनन हार।

पार्क तुम और पिता है, दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया, हर पैर खाए पे

व्यापत देखिया जगत, जाने कौन तेरी गत। सर्ब की रक्षा करे आपे उत्पात, सर्ब की रक्षा करे आपे हर गत।

0: देहन केहन नेहन नीता, माया मट कहाँ लोगारो, छत्तर न पत्तर चौर न चावर, बेटी जात हृदय ना बिचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नाग सिदारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट कोस न छोटा, करत विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कलत्तर साजन सक, उल्टत जात बिरख की चारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ सरन नानक जन, हे भगवंत कृपा करतारो।
1: काची दे मोह फुन बांधी, साठ कठोर कोचील को ज्ञानी, तावत प्रमत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी, जो बन रूप माया मद माता, बिचरत बिकल बडो अपमानी, पर धन पर अपवाद नार निंदा, जह मीठी जी माहे तानी, बल बंच शप करत उपावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी, सील धर्म दया सोच नासद, आयो शरण जी के दानी, कारण करण समरथ श्री धर राख लिहो, नानक के स्वामी।
2: रे मन मूस बिला में गर्भत, करतब करत महामुगना, संपत दोल झोल संग झूलत, माया मगन भ्रमत कुगना, सुत बनिता साजन सुख बंदप, तास्यो मोह बड़्यो सोकना, बोयो बीज अंग मम अंकुर, बीतत औद करत अगना, मृत मझार पसार मुख निरखत, पुंचत पुगत भूख पुखना, सिमर गोपाल दयाल सत संगत, नानक जग जानत सुपना।
3: सेवक कै परपूर युग युग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सनामत, कह न सके को तू कद का, ब्रह्मा बिसन सिरे तै अगनत, तिनको मोह पया मन मद का, चवरासी रख जोन उपाय, रिजक दिया सब हूं को तद का, सेवक कै परपूर युग युग, वाहगुरु तेरा सब सदका।
4: ब्रह्मा दिक शिव शांत मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देव अर दानव, इक तिल ताको मरम न पावत, प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जच है, मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत।

जल कहा चिलकणा, कोटिम कालड़ी मास, तोत्या जूठ न उतरै, जे सौ सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लिखा मंगिया तिथे खड़े दिसन, कोठे मंडप माड़िया असह चितविया, ठठिया कम न आवनी, विचह सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मांझ वसन, घुट घुट जिया खावणे, बग्गे ना कहियान, सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलान, से फल कम नयावनी, ते गुण मैं तन हन, अंधले पार उठाया डुगर वाट बहुत, अखी लोड़ी नाल हौ चढ़ लंगा कित, चकरिया चंगियाइया अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्ट है जित, चाकरिया चंगियाइया अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्ट है जित। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ

मुद्रा बन में रंकिया कल मेहंदी अथर बन हुआ नाव खुदाई अलह पया नील बस्त ले कपड़े पहने तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए कहो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो मारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उदेश रंजन दिया इनने तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु है गोए।

कहे नानक तह सुख होआ तित कारण मदवार। आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूर। पार परम प्रभ पाया उकरे सगल विसूर।

0: सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आपर पूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर।
1: बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ते आए श्री अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरां श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिटाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ

ताण सताणे सलोक महला पहला जे मुहका कर्म है कर्म पितरे दे अगे वसनियाणी है पितरी चोर करे वडिया दलाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे कहले दे।

जमपुर जाए महला पहला, सब सुत परम है दूजे लगे जा, जमन मरना हुक्म है आने आवे जाए, खाना

पौड़ी नर चंदन जपनी हरता के पारावार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, एक नागली जंजीरिया करी चढ़े बसियार, आप कराए करे आप वो कैसे करी पुकार।

0: आनंद बधाई तुद कर मन महता तेज अपना आप जर सरकला भरपूर दिसे जत करता नानक दासन दास तुद आगे बिन बता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल जगत चंगी।

Ik ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन त्रिन कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रभ दातो दातार परयो जाचकी किसरना मिले दान संतरेन जिह लग भवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बल राम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बल राम जियो बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भव जल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम
रस मीठा। अन दिन मन तन पीवा, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास

सोहि महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकणा कोटिम कालड़ी मास तोतियां जूठ न उतरे जे सौ तोवातिस उज्जल कहा चिलकणा कोटिम कालड़ी मास तोतिया जूठ न उतरे जे सौ तोवातिस सज्जन से नाल मैं चलदियां नाल चलाना जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहा कोठे मंडप माड़िया पासहु चित विया ठिया कम नयावनी विच सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांज वसन कोट कोट जिया खावणे बग्गे ना कहियान सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कम नयावनी ते गुण मैं तन हन अंदुले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी नाल हौ चढ़ लंगा कित चौकरियां चंगियाईयां अवर सियाणप कित
ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿੱਤ ਚੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ

अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, ये मौत सबनों आनी है। इस दुनिया ते पक्का कोई भी नहीं रह सकता, थिर कोई भी नहीं रह सकता, सारे आपो अपनी

आपको अपनी कोई ना वंदे थी। जेड़े जीव संसार विच आके घर परिवार दियां जिम्मेवारियां निभाउंदे निरंकार नाल जुड़दे ने, ओ मुख उजला लैके जांदे।

दुनिया नू तारदे होए जा रहे। मरदानी ने पूछ कीती, बाबा घर किन्नी क दूर है, आपां घर कदों जाना है?

जे तू पहला जाना है तेनू पहला पेट दे दे। बाबे दी रमझ मरदाने दी समझ आई, बाबा जी हुणे ही धक्का देण लगे, नहीं मरदानिया तू आपे ही घर याद कीता है, तेरा समा आ गया, तू साडे नालों पहला जाना है। बाबा नानक बाला ते मरदाना खुरम शहर विच पुजे ने, मरदानिया तेरा कुछ अन जल होर लिखिया है, इथों शक लै। अज मरदानी ने पेट भर के खाना खाधा,

मौत तू कौन डरदा है, जेड़ी कुछ घड़िया नू आनी है हुणी आ जावे। पर ऐ सतगुरु तुहाडे चरणा विचों बिछड़न नू मेरा जी नहीं करदा। तुहाडे चरण छड़न नू

ने अपनी शिवास इस शरीर विचों छड़ दिते ने। बाबे नानक ने अपने उपरों चादर लाई ते अपने प्यारे मित्र दे मरदाने दे उपर पा दिती। बालिया तू भी अपनी चादर मरदाने दे उपर पा दे। बाले ने भी अपनी चादर लाई मरदाने ते पा दिती। बाबा नानक जी बाला जी मरदाने दे संस्कार वास्ते लकड़ां कठियां कर रहे ने। लकड़ां कठियां कीतियां चिखा बनाई ते अज बाबे नानक ने अपने हाथ दे नाल मरदाने नूं आग दिती है। अब मरदाने दी शरीर दियां लाटां

इको एक सहारा छोटा जिहा पुत्र किन्नियां आसां लाइयां पुत्र वड्डा होएगा मेरा सहारा बनेगा मेरी बुढ़ड़ी दी बांह पकड़ेगा पर सत्संगियो मौत दे अगे केदा जोर चलदा है मालक दा पाणा अज मां दा पुत्र भी गुजर गया चौं पाइयां ने चुकिया ते शमशान घाट वल नू लै के चले ने जदों चुकन लगे ना आरती ते मां अपने पुत्र दे वैराग विच एडी चली हुई है आरती चुकन नहीं देंदी आरती नू चुकन नहीं देंदे ना चुको मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा सत्संगियो मामा कदों बच्चियां दे दुख चल दिया ने एडी बैराग विच चली हुई पई है ना चुको मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई इस भीड़ दे विच महात्मा बुद्ध जी भी खलोते ने सिमरन करन वाली रूप अगे होए आखन लगी माता मेरी गल सुन तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा इनी गल आखी ना मां बड़ी खुश होई इंज कर एक चावलां दी बुक लिया आ चावल लैन टुरी ना हुणे लियांदी नहीं बई अपनी घरों ना ले आई उस घर विचों लै के आई जिस घर विच कदी कोई ना गुजरिया होवे मेरे घर ते गुजरिया है पिंड विच जांदी पिंड दा एक एक घर फिरिया सवेर तो शाम पै गई कोई भी इहो जिहा घर नहीं मिलिया जिथे कदी कोई ना गुजरिया होवे कोई इहो जिहा घर नहीं

आके नीमी पाई, हाथ जोड़ के आखन लगे मैनू सोझी आ गई। मैनू पता लग गया है भी मौत दे अगे किसे दा जोर नहीं। सारे घर घूमी, चावल सारे घरां विचों मिलदे ने, ते एहो जिहा घर कोई भी नहीं जिथे कदी ना कोई गुजरिया हो। चौं पाइयां ने चुकिया ते चुक के आ मां दे बच्चे नू शमशान घाट विच लै गए। एक लख कूत सवा लख नाती, तह रावण कर दिया ना वाती। आ देखो बाणी विच किड़ियां उदाहरणा, इन्ने पुत्र पोतरे इन्ने रिश्तेदार, ते है कोई रावण दा घर विच दीवा भी जगाउण वाला। सतगुरु आख रहे सोझी दे रहे ने, एक लख पूत सवा लख नाती, इन्ने रिश्तेदार इन्ने पुत्र पोतरे रावण दे, ते तह रावण घर दिया ना वाती। सो सतसंगियो सब ने जाना है, अमल जे कीते दुनी विच दरगे आवे काम।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकते हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

फिर जोनी पाहे हम मैं किथों उपजै, कित संजम एह जाए हम मैं ए हो हुकम है पै किरत फेरा।

चाहे, कृपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाहे। कृपा करे जे आपनी, ता गुर का

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंप

बाग बहरी महला पहला घर पहला पहले बाहर रैन के बन जा रहा मित्रा हुकम पया गरबास पहले बाहर रैन के बन जा रहा मित्रा हुकम पया गरबास उर्द तप अंतर करी बन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाणे

0: साथ तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नू 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: गुरु ग्रंथ साहिब विच इक इह सरलेख हुंदा बनजारा ते पाठ करदे आ बनजारा सरलेख हुंदा ते मेरे मन सी भी बनजारा इत्थे भी आया पर उहदे अर्थ गुरमुख विद्वाना ने कीते। इस बनजारे लफ्ज दा संबंध संगीत नाल है क्योंकि जदो बनजारे तुरदे सन गड्डियां वाले इह रात नूं जे सबर करना ते इह उच्ची खेक ला के गाउंदे जांदे सन। पहले गड्डे वाले ने गाउणा, खीर वाले ने गाउणा, इहदा मतलब इह सी कि काफिला बिल्कुल ठीक है। गुरु जी ने कहा भाई इस शब्द नूं उस तर्ज विच गायो जिहड़ी तर्ज विच गड्डियां वाले बनजारे गाउंदे हुंदे सन। इसे करके बाणी च इक शब्द है करहला। आप जी ने पढ़िया होना आउंदा पाठ करहला। करहला दा वैसे लफ्जी अर्थ ऊठ हुंदा है ना, ऊठ दा बच्चा, पर विद्वान ने कहिंदे आ वी करहले सरलेख इस करके उत्थे मन नूं कहा। हुण इत्थे भी ते बनजारा अपने मनुख नूं कहा, मन नूं कहा। ਉਹ ਕਰਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਰੈਣਕੈ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਾਤ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਨਜਾਰੇ ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

0: साहु बिछड़िया वनजारा बिछड़िया वनजारा साहु बिछड़िया वनजारा।
1: ते वो भुल क्यों गया जेड़े शाह ने सानू भेजे, शाह भुल क्यों गया? ओदा कारण है

0: जन्म लैन की देर हुई, बाबा कबीर जी कहते ने जोन छाड जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसराए। हवा लगन की देर हुई, फिर तू कौन ते मैं कौन, रब ते फिर भोल ही गया। जोन छाड जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसराए, खसम भुल गया। भाई साहब कहते ने जम दो माया मोया, नजर न आवै रखन हारा। वो तो फिर कितने चेचे ते भी नहीं आया। जदों बच्चे का जन्म हुंदा ना सत्संग, बच्चा फिर रोंदा है। दुनिया के लोगों की सोच होर है, रब के प्यारे की सोच होर है। हर बंदा रोंदा जदों दुनिया ते आउंदा। एक तुहाडा वड्डा गुरु ही है बाबा, जिहड़ा हसदा आया ते हसदिया जीवन गुजारिया ते हसदा ही दुनिया तो किते नहीं गए। धन गुरु ग्रंथ साहिब च बैठे ते साध संगत लागत पवन खसम विसराया, फिर रब भुल गया। जदों बंदे दा जन्म हुंदा ए रोंदा है। डाक्टरां नूं पुछो भी जिहड़ा बच्चा जन्म वेले रोंदा इहदा कारण की है। डॉक्टर कहिंदा जी इहदे जन्म वेले रोण दा कारण है जन्म वेले दी तकलीफ। जिहड़ा बच्चा जन्म लैण लग्या नहीं रोंदा, डॉक्टर उहनूं रवाउण दी कोशिश करदा है, उहनूं सूई चोबदे ने, उहदे इस तरह हौली जी पटोकी जी भी मारदे ने हथ दी, फिर किसी ना किसी तरह रो पए। अज विज्ञानक युग दे विच भी जिहड़ा बच्चा जन्म वेले नहीं रोंदा, समझा जांदा भी तंदुरुस्त। ते भाई गुरदास जी नूं पुछो, भाई गुरदास जी जदों बच्चे दा जन्म हुंदा है ये रोंदा क्यों है? डाक्टर ते कहिंदे ने भी इहनूं जन्म वेले जिहड़ी तकलीफ होई है उस करके रोया। भाई गुरदास जी कहिंदे ने तकलीफ करके नहीं रोया, इहदे रोण दा कारण कोई होर है। सिखां आख्या भाई गुरदास जी होर कारण की है इहदे रोण दा? भाई साहब कहिंदे ने रोवै रतन गवाए कै, इहदे कोल सी हीरा, रब नूं हीरा कहा गया। इसे करके बाबा कबीर जी कहिंदे ने हर सो हीरा छाड कै करे आन की आस। बाबा कबीर जी कहिंदे दुनिया दे लोको रब हीरा, जिस जेड़ा उस हीरे नूं भलाएगा। बाबा कबीर जी कहिंदे ने ये जेड़ा परमेश्वर हीरा, जेड़ा उस हीरे नू छड़ के किसे होर दी पूजा करेगा ना। हर सो हीरा छड़ के करे आन की रास, करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाख है रविदास। बाबा कबीर जी कहंदे मैं ही नहीं कहंदा, ये भगत रविदास भी यही गल कहिंदा है, जेड़े रब वर्गे हीरे नूं छड़ के किसे होर दी पूजा करनगे उन्हां नूं कोई माई दा लाल नरकां विच जानों नहीं बचा सकदा। भावें कोई कबरां दी पूजा करदा है, भावें कोई सप्पां दी पूजा करदा, भावें कोई देहधारी दी पूजा करदा, भावें कोई किसे होर अबे तबे दी सेवा करदा, मैं ही नहीं गल कहिंदा। रविदास भगत जी भी कहिंदे ते नर दो जग जाएंगे सत पाख है रविदास, जेड़ा रब तो बिना किसी होर दी आस रखेगा वह नरकां च जाए। ते साध संगत भाई गुरदास जी नूं पुछो बच्चा क्यों रोंदा? भाई साहब कहिंदे इहदे कोल सी इक रतन, इहदे कोल सी हीरा, जदों इहदा जन्म होया ते जन्म हुंदिआं सार इहदे हत्थ चों हीरा खुस गया, इहदी डाढ निकल गई, इह रोण लग पिया। भाई साहब कहिंदे ने रोवै रतन गवाए कै, माया मोह हनेर गुबारा, ओह रोवै दुख अपना हस हस गावै सब परवारा। भाई गुरदास जी कहिंदे ओह बेचारा अपना दुख रो रहा, ये नच दे टप दे स्पीकर लाउंदे शराबा पींदे टोल धमाका वजाउंदे, ओह बेचारा अपना दुख रोंदा है, ये हसदे टपदे ने इह लोग। उहदा कारण यह है भी इहनू रब भुल गया बाहर आउंदिआं सार। साध संगत भगत कबीर जी कहिंदे तेरे वर्गा भी कोई कमला होएगा। दीन बसार्यो रे दवाने, दीन बसार्यो रे, कमलिया तू तो रब ही भुला दिता। मैनू खिमा करने असी गृहस्थी लोग हाँ, गृहस्थी बंदा परमेश्वर बच्चे बख्शद है, माता पिता भैन भाई। बाबा कबीर जी कहिंदे इन्हां दी पालना करनी, इन्हां वास्ते किरत करनी तेरा फर्ज सी। चंगा कीता तू टब्बर पालिया, बड़ा सोहना टब्बर पालिया, पर बाद किस्मती तेरी ए आ वी तू टब्बर ते पालिया पर रब नू भुला के, टब्बर पालिया रब नू भुला के। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब, धंधा करता रह गया भाई रहा ना बंद। बस धंधा करता करते मर गया, टब्बर दे पालना सी, पर तेरी गलती सब तो वड्डी ये है वी तू रब नू भुला के टब्बर पालिया। नतीजा की निकलिया रब नू भुलाउण दा, ओ भाई साहब कोलों फिर पंक्ति दोबारा सरवण करी। हां जी,
1: हर बिसरत सदा खुआरी।
0: पुत्रा जेड़ा रब नू भुला दे, जेड़ा रब तो विछड़ जाए ओदे पल्ले फिर खुआरी पैंदी है। खुआरी ओह फिर खुआर हुंदा रहिंदा, दर बदर भटक गया फिरदा। कबीर जी कहिंदे ने दीन बसार्यो रे दीवाने, दीन बसार्यो, तू तो रब ही भुला दिता। पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, पेट भर लिया पशुआ वांग सौ गया, नतीजा के निकलिया मनुख जन्म है हारियो, मानस जन्म तू हार के चला गया। बस आ नतीजा निकलिया रब नू भुलाउण दा। बाबा कबीर जी कहिंदे ने साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ। जेड़ी सत संगत हर रोज करनी सी ना, जेड़ा तू वादा करके आया सा। भाई गुरदास जी कहिंदे ने बंदा बड़ा बेईमान ते बेजबाना बेजबान। सिखां आख्या जी ओह कहिंदे, भाई साहब कहिंदे जदों दुनिया ते आउण लगा ना बंदा ते रब ने आख्या ओ भाई तू चलिया की करेगा जाके मेरे वास्ते। बंदा एडा चलाक कहिंदा जी मैं की करांगा, तुसी दसो मैनू दुनिया ते घल्लण लगे हो, तुसी मेरे वास्ते की करोगे। भाई गुरदास जी दे बचन रब ने आख्या तू दुनिया ते जा, तेनू रिजक भेजदा रहांगा, माड़ा चंगा कपड़ा लत्ता भेजदा रहांगा। ये बंदा एडा बेईमान कहिंदा जी लिख के दिओ, लिख के जबानी गुलामी मुल का दा हुंदा। इन्हें फिर लिख के लिया, लिख के इस मथे ते रब दे विच यकीन नहीं करता, इन्हें मथे ते लिखाया। तो भाई साहब कहिंदे फिर रब कहिंदा तू ते मेरे कोलो लिखा लिया, हुण दस वे तू जाके की करेगा। भाई साहब कहिंदे फिर इन्हें एक वादा किया, असन बसन संग लीने और बचन कीने, कपड़ा लत्ता रिजक लिखा के फिर इन्हें बचन किया, वादा किया। असन बसन संग लीने और बचन कीने, जन्म लै साध संग श्री गुरु राध है, तुसी मैनू जन्म दियो मैं सत संगत विच जाया करांगा ते गुरु जी दी आराधना करया करांगा। ये बचन करके आया, होया कि इहां आए दाता बिसराए, दासी लपटाए पंच दूत भूत परम परमत असाध है। भाई साहब कहिंदे इत्थे आ गया, इहां आए दाता बिसराए, दाता दे भोली गया। सात संगत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च दाता शब्द बहुत वरिया है। कई साल हो गए बंबे वाले पासों ट्रेन आ रही सी, ते एक सिखी स्वरूप वाला परिवार दो दे बच्चे दो जी आप ते दिल्लियों बैठे, हुण अगले पासे जाना होएगा जम्मू वाल। गल्लां तो मैनू शक पिया कि किथे चले हो, उन्हें फिर दस्या मैं किथे चलिया जम्मू वाले पास। मैं क्या गुस्सा ना करो, जदो तुसी सीट ते बैठे ना मेरे सामने, मैं ते उदो तुहाडी करतूत वेख ली, जदो आण के बैठे हो ना बैठदिया सारी मैं वेख गया भई ये बंदे ने किथे जाना, पुछण दा कारण ही। कहिंदा जी तुहानू शक की पिया। मैं जदों तू क्या सी ना दातिए तेरा लख लख शुक्र, दातिए तेरा लख लख शुक्र, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦਾਤਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਦਾਤੀ ਦੂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਤੀ ਦੇ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਹਾਂ ਆਏ ਦਾਤਾ ਬਿਸਰਾਏ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਭੂਤ ਭਰਮ ਭਰਮ ਤਸਾਜਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਮਰਨ ਬਿਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਮਰਨ ਬਿਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀਤ ਹਾਰ ਸੁਪਨ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਤੀਨ ਲੀਜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁੜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੋ। ਅਵਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਤੀਤ ਲੀਜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਜੀਤ, ਕੀਜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਅਗਮਗਾਰ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਰਚਿਓ ਧੰਦਾ ਝੂਠ। ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਭਟਕਤ ਚਾਲੇ ਉੱਠ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸੂਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਕਾਂ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਜਾਪਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਲਾਬ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਨ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਜਾਪਿਆ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰਕ ਇਹ ਜਾਪਿਆ, ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪਿਆ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਬਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ। ਪੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਲਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਂ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਬਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ। तू तो बड़ा हरिया भरिया स, कमल दे फुल सोने वर्गे ऐन झूमदे सी इधर उधर इधर उधर। पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन, कै दुखड़ा सड़े ओए। बाबा नानक जी पुछदे ने केड़ा दुख लग गया तेनू, तू सड़ के गया है। काली होई आ देहुरी, तेरी ते काया भी काली हो गई। जेड़े मेरे वीरां दा बचपन पिंड च बीतिया उन्होंने चेता होएगा, जदों छप्पड़ दा पानी सुक जांदा सी छप्पड़ दी मिट्टी भी काली हो जांदी सी। हजूर कहंदे ने काली होई आ देहुरी, तेरी ते काया भी काली होगी, की कारण है? फिर अगले पासों जवाब आया, नानक मैं तन पंग। तालाब वाले पासे तो जवाब आया, नानक शुक्र है ते मेरी बात पुछी आ, मेरे च एक विघन पै गया, मेरे को गलती हो गई, मेरे के घाटा पै गया, मैनू केड़ी गल का घाटा पै गया। छप्पड़ वाले पासे जवाब आया, जाना पानी नाल जैसे ती मेरा संग। अगले पासे जवाब आया, नानक जी मैं इस करके सड़ गया, मैं इस करके दुखी हाँ, मैं इस करके उजड़ गया, हुण मैनू पता लगा भी वो सारी रौनक पानी करके सी। हुण मैनू पानी नहीं मिलता, पानी सुक गया, मेरे कमल दे फुल सुक गए, मेरी काया काली हो गई। बाबा नानक जी कहिंदे दुनिया दे लोगो यही हशर हुंदा जिहड़ा बंदा रब नू भुलादा है। जिन्नी नाम विसारिया से होत डिठे खे। बाबा नानक हजूर कहिंदे ने मैं सवाल च रलदे वेखे बंदे, मैं मिट्टी च मिलदे वेखे वह बंदे जिन्हां नू रब भुल गया। चलो खैर, धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने हर बिसरत सदा खुआरी। पुत्रा जदों रब भुल जे फिर पल्ले खुआरी पैंदी है। हांजी,
1: ताको धोखा कहां व्यापै।
0: धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने भी असल विच गल इह आ, बंदे दा भी कसूर कोई नहीं, माया धोखा कर जांदी है बंदे नाल। एक शब्द आप नूं याद है, बाबा कबीर जी कहिंदे ने हे मेरे रब जी, ये जिहड़ा बंदा तैनू भुल गया इहदा विचारे दा अपना कसूर कोई नहीं, इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे। आ माया ने तेरे नाल तोड़ दिया। किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहां करे विचारे। ये जिहड़ी माया वा ना खसमां नूं खाणी, ये बंदे दे अंदर तेरा प्यार ही नहीं पैदा होण दिंदी, ये धोखा कर जांदी है माया बंदे नाल। साध संगत बाबा कबीर जी कहिंदे भी ये जिहड़ी माया वा ना माया, इको दुनिया दे इस्त्री है। हर इस्त्री दा पति दुनिया तो तुर जे रोंदी है, इको ही इस्त्री है जिहदा खसम मर जे ते रोंदी नहीं। खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारा और होवे, रखवारे का होए विनाश। एक मालक मरदा दूसरा सराणे खलोता हुंदा, आग्या नरक इहां भोग बिलास। बाबा कबीर जी कहिंदे जेड़े माया विच ही मस्त रहणगे ना, जिन्ना ना माया धोखा कर जांदी है, बड़े भोग भोगदे ने, आग्या नरक पावक फिर वो जूना च तुर जांदा बंदा। एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। बड़े ध्यान नाल सुनना, बाबा कबीर जी कहिंदे सारी दुनिया भावे को अमीर है भावे को गरीब है, सारी दुनिया एक स्त्री नू अपनी पत्नी बनाना चाहते ने, अपनी घरवाली बनाना चाहते ने। एक सुहागण सगल प्यारी, सगले जी जंत की नारी। पर बाबा कबीर जी कहिंदे ने भी ये जिहड़ी माया वा ना माया, कर शिंगार बह पखियारी। वेशवा वांग हार शिंगार करके टैम सिर बह जांदी है। संत की ठिठकी फिरे बिचारी, पर जिहड़े संत लोग आ ना वो कहिंदे ने परे हो गए बह, परे हो गए। बिचारी उन्हां तों डरदी बड़ी है, संत भागो पाशा परे। बड़े ध्यान नाल सुनियो बचन, ये साडे सारिआं लई है। जिहड़े लोग सिमरन करदे ने, जिहड़े लोग भजन नाम सिमरन सेवा करदे ने, उन्हां दे पिछे भी लगी फिरदी है, उन्हां नूं वस च करना चाहुंदी है। संत भागो पाशा परे, गुर प्रसादी मारों डरे, पर बाबा कबीर जी कहंदे प्रभु दे प्यारे तो डरदी बड़ी है, उन्हां दी मार तो डरदी है। ते बाबा कबीर जी कहंदे ने असल विच गल ए है, ये जिहड़ी दुनिया वण दुनिया साकत की ओ पिंड परायन हमको दृष्ट परे त्रिख डायन, ये जिहड़ी माया लोग इनू बड़ा प्यार करदे ने पर

0: आ सकती है, सोने घर के रूप च भी आ सकती है, चौधर के रूप च भी आ सकती है। कबीर जी कहते मेरे को बड़ा भेस बदल बदल के आए। कबीर आई मुझे पैन एक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदे। बाबा कबीर जी कहते मैं हैरान होया भी बार बार मेरे वाल आए। फिर मैं की कीता, कहते मैं यदा नक् वढ़िया मैं कन्न कटे, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी। कबीर जी कहते मैं पछाण गया भी ये माया, पहला मैं यदा नक् वढ़िया फिर मैं दे कान वड़े भी जा तुरी। फिर असल विच गल ये है साध संगत, प्रोफेसर साहब सिंह कहिंदे ने माया दी गिरफ्त च फसिया होया बंदा दो गल्लां करके दुनिया ते जूंदा है। पहला तो लोड़ तो वाद करजे चुक चुक के इना खर्च करता है, इना खर्च करता भावे घर होए ते भावे व्याह होए, मेरा नक नहीं रहना, मेरा नक नहीं रहना, नक रखन वास्ते लखा रुपये खर्चदा, मेरा नक रह जाए। ते जदो फिर लखा रुपये खर्च दिंदा फिर कान ला ला के सुनदा भी हुण लोग मेरे बारे की कहिंदे ने। बाबा कबीर जी कहते नक रखण वास्ते खर्चा किया पिसो कन ला ला के सुनदा है। असि नक ते कन दोवें दे वढ दिते, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी। कहो कबीर संतन की प्यारी, कहो कबीर संतन की बैर, तीन लोग की प्यारी। संत इन वैरी समझते ने, दुनिया के लोग इन अपना मित्र समझते ने। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने तां को धोखा कहां व्यापै भाई, जिदे ते मेरे रब की कृपा होए ओदे नाले धोखा नहीं करदी, ओनू धोखा नहीं व्याप सकदा। हां जी,
1: जा को ओट तुहारी।
0: धन गुरु अर्जन देव जी कृपा करदे ने, हे मेरे प्रभु जिदे ते तेरी कृपा होए ए माया ओदे नाल धोखा नहीं कर सकदी। साध संगत मैं बेनती करांगा साडे सारयां लई वी अरदास भी करनी चाहीदी है पिए कि धोखा ना कर दे, धोखे तो बचाए। बड़े रूप ने भगत नामदेव जी, आ टैलीफोन तो हूं आए ने, टैलीफोन मोबाइल फोन आ, मेरा ख्याल है भाई तुसी ला लो भाई 97, 98, 99 के करीब आए। पहला ये फोन नहीं सी होते, और जदों ये फोन आए बड़े हैरान होए लोग। जदों असी फोन मिलाने तो सब तो पहला अगला बंदा कहिंदा कौन है भाई, तो फोन मिलाने वाला बंदा कहिंदा जी मैं ही हाँ। अगला बंदा कहिंदा मैं पछाणिया नहीं, अपना नाम दस भी तेरा नाम की है। वो फिर नाम दसदा, भगतां दा टैलीफोन चलता रब दे नाल, सीधा चलता फोन इहना। साडे उस्ताद जी कहिंदे बेटा भगत नामदेव जी ने रब नू फोन मिलाया, ते फोन मिलाने लई नंबर सही चाहिए ने, सही एक भी नंबर गलत हो जाए फोन नहीं मिलता। रब ना फोन ते गल करन वास्ते कुछ नंबर ने गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे हुए। चलो फिर कि गुरु कृपा करे विचार करन, जे उन्हां नंबरां चो एक भी कि गलत हो गया तो फोन नहीं लगना, भावें मनेरा हो जिहड़ा मर्जी। भगत नामदेव जी ने फोन मिलाया रब नू, यह सानू समझाउण वास्ते आ। रब ने फोन चुक लिया, अमृत वेला से। परमेश्वर जी कहते ने तू कौन रे, तू कौन है भाई। भगत नामदेव जी कहते जी नामा, मैं नामा बोलदा नामा, तू कौन रे। रब जी कहते ने तू कौन है भाई। भगत नामदेव जी कहते मैं जी मैं ही हाँ। रब कहन लगा मैं आख्या नहीं सरना, नाम दस अपना नाम। बड़े लोगों के मैं फोन आते ने नाम दस तेरा नाम की है। भगत नामदेव जी कहते ने तू कौन रे, मैं जी मैं ही हाँ जी। रब ने आख्या हो जी नाम दसो अपना नाम की है। मैं जी नामा, मैं जी नामा बोलता, असी तो अपना नाम एन कि कई थखड़ सला के कि बोल। भगत जी कहते जी मैं नामा बोलता। रब जी कहते हो जी दसो की काम है तुहानू। भगत जी कहते जी बाकी तो ठीक है सब कुछ।

0: कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street, Northeast, Calgary।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111 ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63rd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: रिसेप्शन, यूनिट नंबर 124, 4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी लें आज ही केयरिंग पे कॉल करो 403-605-6300 यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने ले कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लेके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347, 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट, कैलगरी, नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570 65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर, कैलगरी।

आप हाथ दले हो उबारी सर बठार मोह सहाई दुष्ट दोख तेले हो बचाई सवैया आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां शबदो ता गावहु हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईयां कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईयां सदा कुर्बान कीता गुरु विट हों जिस दियाँ एह वड़ियाईयां कह नानक सुन हो संत हो शबद तुर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सुभागै कर सुभागै शबद वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लगे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो बड़ भागी हो सग

तरस पयो तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा

काचे गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे किरम दल खाई, काची गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिर ता फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया, ज्यो मधुमाखी त्यों सठोर रस, जोर जोर तन किया,

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया।